0: জুন থেকে একুশে জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে যা বৃদ্ধি পেয়ে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই 19 জুন থেকে 21 জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বৈষ্ণবী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाए। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। लो फिरा

0: 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
3: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से

0: ट्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है।

0: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। हर दिन सुबह 9:10 पर हम लेकर आते हैं आपके लिए भाव प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम रसधारा में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा। आज हम बात करेंगे शांति एवं

मानव अधिकार की। बात करें अगर मानव जीवन की, तो मानव जीवन की पहली आवश्यकता होती है शांति। हर मनुष्य, हर मानव कहता है कि मैं शांति प्रिय हूं, हम शांति प्रिय हैं। लेकिन अगर हर कोई शांति प्रिय है तो फिर अशांति। फिर कैसे चले आते हैं? इन्हीं सारी बातों को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कार्यक्रम प्रस्थारा में। बना रहेगा हमारा साथ पूरे 10 बजे तक। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार की आवाज के साथ करते हैं। सुनते हैं जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, आनंद बख्शी का लिखा गीत, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में, फिल्म आपकी कसम से।

शांति एवं मानव अधिकार कार्यक्रम रसधारा में आज का हमारा विषय। मानव सभ्यता का इतिहास जितना ही विकसित और उपलब्धियों का इतिहास है, उतना ही संघर्षों और चुनौतियों का भी है। हर मानव की तलाश है शांति। अगर हर कोई शांति की ही तलाश कर रहा है तो फिर ये चुनौतियां, अधिकारों की लड़ाई, रक्षा के लिए संघर्ष, मानव अधिकार की बात कहां से आती है? शांति और मानव अधिकार ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर एक सभ्य, सुरक्षित, समृद्ध समाज की नींव टिकी होती है। मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त हैं। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, राष्ट्रीयता या किसी भी अन्य अधिकार पर इनमें कोई भेदभाव किया ही नहीं जा सकता। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सभी मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण अंग हैं। और जब ये सारे अंग एक साथ मिलते हैं तो वहीं से शुरुआत होती है शांति की, सुव्यवस्था की।

द्वितीय विश्व युद्ध ने मानवता की ऐसी त्रासदी दिखाई जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। लाखों लोगों की मृत्यु और मानव अधिकारों के व्यापक उल्लंघन के बाद विश्व समुदाय ने यह महसूस किया कि शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के बिना मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। यह घोषणा दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा का संकल्प थी। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, शांति का अर्थ है न्याय, समानता, सम्मान और अवसरों की उपलब्धता। जब समाज में भेदभाव,

गरीबी, शोषण और अन्याय बढ़ते हैं तब शांति कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए मानवाधिकार और शांति एक दूसरे के पूरक हैं।

शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं। आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कहीं बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा, कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा, तो कहीं लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मानवाधिकारों की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व बन जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और न्याय के अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न संस्थाएं इन अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। शांति की स्थापना केवल कानूनों से नहीं, इसके लिए समाज में सहिष्णुता, संवाद और आपसी सम्मान की भावना आवश्यक है। जब हम दूसरों के विचारों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं, तभी वास्तविक शांति का वातावरण निर्मित हो पाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28

0: जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम रसधारा, जहां आज हम बात कर रहे हैं शांति एवं मानव अधिकार की। युवा पीढ़ी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से युवा मानवाधिकारों की रक्षा और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं और दे रहे हैं। डिजिटल युग में मानवाधिकारों की चुनौतियां बदल गई हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन भेदभाव, निजता का उल्लंघन और गलत सूचनाओं का प्रसार नए खतरे बनकर उभर रहे हैं। ऐसे समय में डिजिटल जिम्मेदारी और जागरूकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। शांति और मानवाधिकार केवल अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं या कानूनी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन, व्यवहार और सोच का हिस्सा बन चुके हैं और बने रहने चाहिए।

97.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम रसधारा, जहां आज हम बात कर रहे थे शांति एवं मानवाधिकार की। दीजिए आज्ञा अपने दोस्त अपनी होस्ट पूजा को। कार्यक्रम से होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में 12 बजे। साथ बने रहिए संचयिता के। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के

0: समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो चल पड़े मंजिल की तरफ। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। जुनू के इस चिराग को रोशन रखने के लिए रूबरू हूँ आज के आईने के साथ। दोस्तों, आज हम नेशनल रीडिंग डे यानी कौमी पढ़ने के दिन के मौजू पर बातें करेंगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। दोस्तों, ये शेर गर्चे ये नज़रिया गर्चे आज के तारीख में फरसूदा है, ताहम इससे क़ता नज़र आज हर रोज़ के तरह एक ख़ास दिन आज मनाया जा रहा है। 19 जून यानी आज का दिन भी कुछ ख़ास है, यानी मुताला से मुतालिक दिन का आज कौमी सतह पर एहतमाम किया जा रहा है। ये एक ऐसा मौजू है मौका है जो पीएन पानीकर की जानिब से लाइब्रेरी तहरीक की शुरुआत के एजाज में मनाया जाता है। इन्होंने ही केरला में पहली लाइब्रेरी के क़याम का आगाज़ किया और साथ ही हिंदुस्तान में खानदगी तहरीक की शुरुआत भी की। तभी से पीएन पानीकर की खिदमात को याद करने के लिए मुल्क भर में पढ़ने या मुतालिया का जश्न मनाया जाता है। 1996 में पहली बार इसका आगाज़ हुआ और हर दिन इसकी अहमियत में इजाफा हो रहा है। केरला हुकूमत और पीएन पानीकर फाउंडेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2017 को बाकायदा तौर पर इस दिन को कौमी पढ़ने का दिन करार दिया। एक माह तक जारी इस दिन को मनाया जाता है। इस दौरान तालीमी अदारों में किताबों की नुमाइश, मुबाहिशे, क्विज़ के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में ये दिन लाइब्रेरियों के आगाज़ की अलामत है। लाइब्रेरी तहरीक 1900 के दहाई में शुरू हो गई थी, उस वक्त पढ़ना रोज़ाना की सरगर्मी में शामिल नहीं था। इसके अलावा चंद मरात याफ्ता अफराद ही किताबें खरीद सकते थे, लेकिन लाइब्रेरियों ने दुनिया भर में आम लोगों के लिए भी मुताले का दरवाज़ा खोल दिया। अब लाइब्रेरी में रसाई रखने वाले कोई भी शख्स पढ़ सकता है। इस वजह से लोगों में बेदारी भी पैदा हुई है। मौजूद सामीन, पीएन पानीकर की इन्हीं खिदमात की वजह से इन्हें फादर ऑफ द इंडियाज लाइब्रेरी मूवमेंट यानी हिंदुस्तान की लाइब्रेरी तहरीक के बानी कहा जाता है। किताबों को कामयाबी की कुंजी कहने वाले पानीकर की दूरंदेशी का ये सिला है कि आज मुल्क के कोने कोने में छोटी बड़ी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, जहाँ मुताले के शायकीन अपनी तशनगी मिटाने को आते हैं। मौजूद सामिन, ये था आज का वो आईना जिसे आप रूबरू हुए, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है खूबसूरत नगमे की, उदित नारायण की आवाज़ में क़यामत से क़यामत तक का ये नगमा आपके गोशे गुजार है। मजरू सुल्तान ने इससे लिखा है, जबकि मौसीकी से सजाया है आनंद मिलन ने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: दोस्तों पढ़ाई के जरिए आप सारी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई करें और जमकर पढ़ाई करें। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:26 और 37 सेकंड हो रहे हैं और इसी के साथ पीएम सम्मान से मुतालिक एक जानकारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत

0: 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश में अब बारी है मंजरनामे की। दोस्तों, आज के दिन हम सरकारी फ्लाई स्कीम की जानकारी गोशगुजार करते हैं। जी हाँ, हज के ताल्लुक से सुविधा ऐप आज आप समाप्त फरमाएंगे कि किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिया आप बआसानी इसका अहतमाम कर सकते हैं। हुजूर, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। दोस्तों, हज ऐप सुविधा हुकूमत हिंद की वज़ारत अक़लियती उमूर और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज ज़ायरीन के लिए मुतारफ़ कराई गई है। ये एक डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन है। ये ऐप हजाज इकराम के सफ़र को मज़ीद महफूज और मुनज़्ज़म और परेशानी से पाक बनाने के लिए तैयार की गई है। जी हाँ, जहाँ तक इसकी फ़ीचर्स का ताल्लुक है, फ़्लाइट और रिहाइश की तफसीलात की जानकारी आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। परवाज़ की शेड्यूल, वीज़ा और सऊदी अरब में क़याम की जगह यानी बिल्डिंग और कमरा नंबर की मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आपके सामान की रियल टाइमिंग, लोकेशन की ट्रैकिंग और स्क्रीनिंग की जा सकती है। GPS नेविगेशन की मदद से मक्का, मदीना, मिना और अरफात में मुकद्दस मकामात तक पहुंचने के लिए रास्ते बताने वाली नेविगेशन की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मुकद्दस सफ़र के दौरान ज़ायरीन को अक्सर सेहत और हंगामी खदमात की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में आप परेशान ना हो। मेडिकल हिस्ट्री की सहूलत और इमरजेंसी SOS अलर्ट्स और करीबी स्टेट हज इंस्पेक्टर से रबते की तफसीलात तक आपकी रसाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान, जबकि एक अलग माहौल और अलग मौसम में आपको जाना पड़ता है। इबादत और रहनुमाई के लिए क़िबला, कंपास, नमाज के औकात और हज के दौरान क्या करें क्या ना करें की मालूमात फराहम कराई जाती है। हुकूमत की जानिब से सर्कुलर्स जारी किए जाते हैं जिसकी खबरें आप तक पहुंच सकती हैं। और आखिर में अहम बात यह कि आप ऐप कैसे हासिल करें। इस ऐप को एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर से जबकि आईफोन के एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कवर कोड, कैप्चर कोड और पासपोर्ट और AIN की ज़रूरत होगी। दोस्तों, हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। इनमें हिंदुस्तानी आज़मीन हज का शुमार दुनिया के सबसे बड़े हज काफिलों में होता है, लेकिन शायद कम लोग जानते होंगे कि गुज़श्ता चंद बरसों में हजाज इकराम के लिए जो सहूलत, इंतजाम और असलाहत मुतारिफ कराई गई है, वह खामोश मगर बड़ी तब्दीली की इलामत है। एक वक्त था जब हज दरख्वास्तों, दस्तावीजात, रहाइश और शहरी सफरी मसाइल के सबब आज़मीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लंबी कतारें, कागजी कार्रवाई, एजेंटों पर अनसार और मालूमात की कमी की आम शिकायत थी। मगर आज हिंदुस्तान का हज तेज़ी से डिजिटल, शफाफ और ज़्यादा सहल बनता जा रहा है। आज हज दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा होती हैं, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए मालूमात फराहम की जाती है और आज़मीन को तरबियती प्रोग्राम से गुजारा जाता है ताकि वो मनासिक हज बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। कई रियासतों में हज सहूलियात मराकज़ कायम किए गए हैं जहां बुज़ुर्ग अफराद और देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की रहनुमाई की जाती है। ख्वातीन के हवाले से भी एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। 2018 के बाद हिंदुस्तान ने बग़ैर महरम ख्वातीन को हज पर जाने की इजाज़त दी है। اس فیصلے کے بعد ہزاروں خواتین نے پہلی

बार आजादाना तौर पर हज की सआदत हासिल की। सरकारी मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों में 15,000 से ज़ायद ख़वातीन बग़ैर महरम हज अदा कर चुकी हैं। यह कदम न सिर्फ ख़वातीन को बाख्तार बाख्तियार बनाने की मिसाल बना सका है बल्कि सऊदी अरब की नई पॉलिसियों के साथ हम आहंगी का भी मजहर है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान से हर साल 1,75,000 से 2,00,000 आजमीन हज सऊदी अरब जाते हैं जो दुनिया के बड़े हज कोटों में शुमार होता है। इस पूरे अमल को मुनज़िम करने के लिए वज़ारत अक़लियती उमूर और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा किया है। अब बात अगर सेहत की करें तो हज के दौरान सेहत और सलामती के इंतजाम में भी नुमाया बेहतरी देखी गई है। हिंदुस्तानी मेडिकल मिशन्स सऊदी अरब में तैनात किए जाते हैं जहां डॉक्टरों नर्सों और माविन अमले की टीमें आजमीन को तिब्बी सहूलत फराहम करती हैं। वैक्सीनेशन मुहिम गर्मी से बचाव की आगाही और हंगामी तिब्बी इमदाद जैसे इकदामात ने हज़ारों जानें महफूज बनाने में मदद की है। सच है दोस्तों, अगर आप किसी नए जगह पर जा रहे हैं वो अव्वल तो ये कि वहाँ के जो मौसम है वो आपसे मुआफिक नहीं होते और होने में कुछ वक्त लगता है और ऐसे में वो हज की जो रियाजतें हैं वो बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो नतीजा ये होता है कि अक्सर वो अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। तो एक गैर जगह पर जाकर के आप आखिर कैसे ख़ुद को तिब्बी सहूलत पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए हमारे मुल्क के जानिब से एक खसूसी मेडिकल टीम का जो है वो तैनाती की जाती है ताकि वो अपने तौर पर ऐसे हज़ारों की तादाद में जो आजमीन हज हैं उनकी जानें बचा सकें। हिंदुस्तानी हुकूमत ने फ़जाई सफ़र के शोबे में भी अहम इस्लाहात किए हैं। पहले हज परवास के किरायों को लेकर शदीद शिकायात सामने आती थी मगर अब मुख्तलिफ एयरलाइंस और बेहतर राबताकारी के ज़रिया सफरी अमल नस्बतन मुनज़्ज़म हुआ है। कई शहरों से बराह रास्त हज परवाज़ें चलाई जाती हैं जिनसे आजमीन को सहूलत मिली है। दोस्तों, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और एक कोने से दूसरे तक की अच्छी खासी वो दूरी है, फासला है। ऐसे में किस शहर से और किस सूबे से आजमीन हज को इस हज के फरीज़ा को अंजाम देने के लिए जाना है, इसके लिए बेहतर तौर पर वो परवास की सहूलत और करीबी नज़दीकी एयरपोर्ट्स के ज़रिया इनके परवास के जो है इंतज़ाम किए जाते हैं और हमारा मुल्क इस सिलसिले में बहुत से असलाहत किए हैं ताकि आजमीन हज को बेहतर और आराम के साथ इस मुकद्दस हज के अदायगी में जो है आसानी पैदा हो और इसके लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के बेहतर सफारती ताल्लुकात ने भी हज इंतजामात को मज़ीद मजबूत किया है। जी हाँ, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नतीजे में रहाइश, ट्रांसपोर्ट और मक्का और मदीना में सहूलियात के मियार में बेहतरी आई है। हिंदुस्तानी आजमीन के लिए मखसूस इमारतें, बस सर्विसेज और हेल्प डेस्क अब ज़्यादा मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जहां हर साल एक मुल्क से 2,00,000 के लगभग आजमीन हज मुकद्दस हज के फराइज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, ऐसे में उनके रहाइश का मसला, उनके होटल और खाने पीने, इसके अलावा नकल व हमल की सहूलत का क्या होगा। तो इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए हुकूमत हिंद ने बहुत बेहतरीन इकदामात किए हैं, इंतजाम किए हैं। मखसूस इमारतें और बस सर्विस और हेल्प डेस्क जैसे मौसर अंदाज में काम करने वाली इकदाम भी किए हैं। ये भी हकीकत है कि इतने बड़े पैमाने पर हज ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर मिसाली करार दिया जा रहा है। अब भी कई चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग आजमीन की रहनुमाई, ज़बान के मसाइल और बाज़ औक़ात निजी टूर ऑपरेटरों की बेज़ाब्तगी की वजह से कुछ परेशानियां होती हैं। हिंदुस्तानी हज इंतजाम एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त
है

0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। दोस्तों सुनाना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन वक्त की तंगी है और घड़ी कह रही है कि अब जाना होगा, लेकिन जाने से पहले एक और आखिरी पेशकश आपको ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। साइंस खेल खेल में मौजूसामीन, साइंस ना तो एक मुअम्मा है ना दुश्वार मजमून। अगर आप दिलचस्पी के साथ इसके रूमूज को समझेंगे तो यह किसी दिलरुबा से कम नहीं। आज आप मुश्ताक अहमद से रेस्ट और मोशन के ताल्लुक से अहम जानकारियां समाप्त फरमाएंगे। तो पेश है साइंस खेल खेल में।
1: सामिन हजरात, अब पेश है हफ्ते रोजा प्रोग्राम साइंस खेल खेल में। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर तजुर्बात और मुशाहिदात, और आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे रोजमर्रा जिंदगी में साइंस कहाँ कहाँ छुपी है। कभी हवा के दबाव में, कभी पानी के बहाव में, कभी रोशनी के रंगों में, तो कभी आवाज की लहरों में। तो चलिए देखते हैं आज क्या बातें होती है। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं सरकारी स्कूल के माहिर फिजिकल साइंस के टीचर मुश्ताक अहमद साहब। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम है।
2: जी शुक्रिया बहुत।
1: आज हमारे सामीन को आप क्या सिखा रहे हैं?
2: आज जो है हम लोग बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन, सुकून व हरकत के बारे में।
1: जी, रेस्ट और मोशन यानी सुकून और हरकत, यानी रुके हुए में
2: चीजें जो चल रही हैं।
1: हमारे
2: इर्द-गिर्द बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं।
1: जी,
2: और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं। उन चीजों के मुतालिक जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देख रहे हैं अपने बहुत सारे इर्द-गिर्द बहुत सारी चीजें जो रेस्ट में नजर आती हैं। जैसे मेज पर रखा हुआ ये कलम है ना, ये पानी का बोतल है,

0: ये सारी चीजें क्या है, ये रेस्ट में है,
1: रेस्ट में है
0: जी। और हमारे इतराफ में हम देखते हैं कि गाड़ियां चल रही हैं, है ना, परिंदे उड़ रहे हैं, है ना, ये पानी बह रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं रेस्ट और मोशन के जुमरे में आती है। ये कुछ चीजें जो नजर आ रही हैं बहती हुई वो मोशन में है, जो चीजें रुकी हुई हैं वो सुकून की हालत में।
1: बिल्कुल, आमतौर पर देखा जाए जो रुकी हुई चीजें हैं वो रेस्ट हो जाती हैं और सुकून में है, और जो चल रही हैं जैसे गाड़ी हो या फिर बहता पानी या परिंदे उड़ रहे हैं, तो ये सारे मोशन में आते हैं, यानी कि हरकत में है।
0: साइंस के ताल्लुक से जब हम इसकी बात करेंगे तो कहेंगे कि सुकून ये जो रेस्ट है और हरकत ये जो मोशन है, इसके तस्वरात को समझने के लिए कुछ अहम बातें समझना जरूरी है। एक वर्ड आता है उसको समझना, रेफरेंस बॉडी क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो उसको हम एक मुशाहदे के जरिए समझ सकते हैं।
1: क्या मुशाहदा है वो?
0: अगर हम देखते हैं मुशाहदे में कि एक ट्रेन पर दो सवार हैं
1: जी,
0: ट्रेन चल रही है और ट्रेन पर जो दोनों शख्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के ताल्लुक से रेस्ट में है, भाई वो तो बैठे हुए, लेकिन वहीं एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ शख्स वो जब ट्रेन को देख रहा होता है, तो ट्रेन जब उन दोनों शख्सों से जुदा होती है, उन दोनों शख्सों को लेकर आगे बढ़ती है, तो उन दोनों शख्सों को लगता है कि ये जो शख्स प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ये तो मुझसे जुदा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ना, हम तो रेस्ट में है, लेकिन वो शख्स जो है मुझे जो देख रहा है प्लेटफॉर्म से वो हम उससे दूर जा रहे हैं। ये जो हम दूर जा रहे हैं एक्चुअली क्या है कि यही जो दूरी है वो आपको बता रही है कि वो जो शख्स बैठा है या खड़ा है जिससे हम दूर जा रहे हैं, हमको ट्रेन लेके जा रही है, वो रेफरेंस फ्रेम है कि उसके ताल्लुक से हम जो है सुकून में है या रेस्ट में है। उस आदमी को नजर में आ रहा है कि हम जो है ट्रेन में घरचे बैठे हुए हैं, लेकिन हम चूंकि मोशन में, चूंकि ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में जब जा रहे हैं तो ट्रेन मूव कर रहा है, जब ट्रेन मोशन में है तो हम भी मोशन में
1: जी,
0: तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी चीजें हो सकती है, घर हो सकता है,
1: जो जिस हालत में वो उस हिसाब से सोच रहा है
0: जी, बिल्कुल, सड़क है, नुमाया सड़क है, वो चीजें भी रेफरेंस फ्रेम हो सकती है, जिसके ताल्लुक से आप अपने आप को समझिए कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे के ताल्लुक से हमारा आप रेस्ट में है
1: जी,
0: लेकिन चूंकि जमीन खुद गर्दिश कर रही है, अपने चारों तरफ रोटेशनल मोशन कर रही है, तो हम जमीन के ताल्लुक से रेस्ट में नहीं है
1: जी,
0: ठीक है। तो इस रेफरेंस फ्रेम को समझना, इस वक्त हमारा ये कमरा जो है ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है, इसके ताल्लुक से हम और आप जो है बैठे हुए हैं रेस्ट की हालत में हैं, और मोशन का तस्वुर हमारा जब आएगा तो रेफरेंस फ्रेम जो लफ्ज है उसको पहले क्लियर करना हो, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, तो हम समझ सकते हैं
1: वक्त के साथ तब्दीली
0: आनी चाहिए
1: तो वो मोशन में आएगा
0: जी। अगर वक्त के साथ अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि वो चीजें सुकून की हालत में, रेस्ट में, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम लोगों का साइंस में एक टर्म आता है, वो आता है नथिंग इन द यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, दुनिया की कोई भी शय जो है मुतलक सुकून की हालत में नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि चूंकि बजात खुद जमीन जो है चारों तरफ घूम रही है और जमीन पर हम मौजूद हैं, हमारी जो क्याम है, हमारी जो बका है वो जमीन पर है, तो जमीन पर जितनी चीजें हैं वो सब के सब मोशन में है, तो कोई भी चीज अपने आप को ये ना समझे कि हम रेस्ट में हैं। अगरचे ये कुर्सी जो है खाली पड़ी है, ये कुर्सी हमें और आपको जाहिरन लग रहा है कि ये रेस्ट में है, मगर ये रेस्ट में नहीं है अगर इसको रेफरेंस फ्रेम जमीन को बनाया जाए। जमीन चूंकि खुद चल रही है, चारों तरफ गर्दिश कर रही है ना, तो जमीन के ताल्लुक से अगर रेफरेंस फ्रेम बनाकर देखें तो ये चीज जो है, ये कुर्सी भी जो है, ये आपको मोशन में, तो इसको समझना है ना कि पानी की बूंद आ रही है ना, हम पर बरस रही है, हम जो है एक जगह दौड़ कर ऐसे जगह छुपे या फिर उसी रास्ते पर चल रहे जहां बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, ये बारिश जो पानी की बूंदे हम तक पहुंच रही है, हम जो है उसको रेस्ट और मोशन से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखें कि भाई और रोजमर्रा की जिंदगी में और भी बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। जैसे अगर इस रेस्ट और मोशन के चैप्टर में ही अगर हम लोग पढ़े तो न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान थे, जिन्होंने इस रेस्ट और मोशन के ताल्लुक से लॉ ऑफ मोशन दिया। ये लॉ ऑफ मोशन हमारी जिंदगी में ऐसा घुला मिला है कि आप इससे अपने आप को बचा नहीं सकते।
1: क्या है ये लॉ ऑफ मोशन?
0: लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का लॉ जो है, तीन लॉ दिए थे वो
1: जी।

0: उनका पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ बड़ा ही फेमस है, जिसमें पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि आम जबान में हम बच्चों का अगर समझाएं कि कोई भी चीज, चाहे वो रेस्ट में है हो या मोशन में हो, वो उसी वक्त तक रहती है जब तक कि कोई उसको बैरूनी शय, एक्सटर्नल एजेंसी, उसकी हालत को चेंज ना कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। अगर चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और मजीद अगर थोड़ा सा इसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है कुछ नहीं, यही तो फोर्स है। कि हम अगर एक कुर्सी को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह रख रहे हैं तो इसके लिए हमें फोर्स चाहिए,
1: फोर्स की जरूरत पड़ेगी,
0: कुवत पड़ेगी, ताकत की जरूरत पड़ेगी। और ये ताकत लगाने पर जब उसकी हालत तब्दील हो गई, तो ये हालत की तब्दीली क्यों कर हुई, यही न्यूटन का पहला गुड़िया है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के माने क्या है? इनर्शिया अगर एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी,
1: आउटर एजेंट है
0: जी,
1: समझ ले कि बाहरी दबाव है या बाहरी प्रेशर है, तो अगर उसको
0: अगर हम एलैबोरेट करें, बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि इनर्शिया होता क्या है, ये किसी भी चीज की खासियत है जिसकी वजह से वो बॉडी ये चाहती है कि हम जिस हालत में हैं उसी हालत में रहें। हम अगर रेस्ट में हैं तो वो चीज रेस्ट में रहना पसंद करेगी, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद। चीज की इस खासियत का नाम है इनर्शिया। और ये इनर्शिया भी दो तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। जो रोजमर्रा आप और हम मुशाहिदा करते हैं, हमारा ये बस पर चढ़ना, ब्रेक लगने पर अपने आप देखेंगे हम आगे की तरफ झुक गए, या फिर गाड़ी अचानक चल दी तो हम पीछे की तरफ झुक गए, या फिर बस से उतरते वक्त अगर हम अपने कदमों को जमा देंगे तो गिर जाते हैं। कुछ दूर हमको खुद भी चलना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है, रनिंग बस से उतरते वक्त, है ना
1: जी।
0: ये सारा का सारा जो है, जैसे हमारे पंखा अगर हम लोग अचानक बंद करते हैं वो रुक नहीं जाता, कुछ देर चलते ही पंखा चलेगा, पंखा चलने के बाद ही क्या होगा, वो रुकेगा। ये सारा का सारा इनर्शिया है। अब इनर्शिया में दोनों को अगर हम अलग अलग तरीके से पढ़ें तो अलग अलग समझ पाएंगे, और फिर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हमको समझ में आएगा। अगर हम लोग इनर्शिया को समझे कि बच्चा है वो ट्रेन में या बस पर सवार है और बस जो है चल रही है, अगर वो बस अचानक जो है उसका ड्राइवर ब्रेक मारा, तो बच्चा जो है क्या होगा, गरचे वो बैठा हुआ हो कुर्सी पर या फिर खड़ा हो, तो अपने आप को क्या करेगा, वो आगे की तरफ झुकेगा। ये उसकी आगे की तरफ झुकना इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मोशन में था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है मोशन में थी। इसके बॉडी के दो पार्ट कर दिया, एक निचला हिस्सा कमर के, एक कमर से ऊपर का हिस्सा। कमर का जो निचला हिस्सा है वो चूंकि गाड़ी से लगा हुआ था, गाड़ी मोशन में थी, गाड़ी रेस्ट में आ गई, तो ये भी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपरी हिस्सा चूंकि मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा, इसीलिए उस चाहत की वजह से क्या होगा, वो आगे की तरफ झुक जाता
1: है, झुक जाते हैं।
0: और इसके ठीक ऑपोजिट अगर हम एनर्जी ऑफ रेस्ट के अगर एक एग्जांपल के जरिए बच्चों को समझाने की कोशिश करें, तो इसी में देखेंगे कि बस पर कोई बैठा हुआ एक बच्चा है, बस अचानक जो है चलना शुरू कर दी
1: जी।
0: तो बच्चे या हम आपको देखेंगे कि हम बैकवर्ड एक फोर्स महसूस करते हैं कि पीछे की तरफ हम झुक गए,
1: पीछे की तरफ झुक जाते हैं।
0: तो इसमें भी वही फिजिक्स है, क्या है कि भाई मेरा निचला हिस्सा चूंकि बस से ट्रेन से लगा हुआ था
1: जी।
0: और इनर्शिया की वजह से क्या हुआ, बस चूंकि चलने लगी तो मेरा निचला हिस्सा भी चलने लगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा चूंकि सुकून की हालत में है तो वो चाहेगा कि हम सुकून में ही रहें, तो जिसके कारण क्या होगा, वो बैकवर्ड हम एक जॉल्ट महसूस करते हैं और हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये हमारा जो है इनर्शिया का कंसेप्ट है, जिसमें हम मोशन का पहला लॉ को बता सकते। इसी तरह दूसरा जो लॉ है न्यूटन का बड़ा इंटरेस्टिंग है
1: जी।
0: इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, कि जिसमें लॉ ऑफ फोर्स में क्या है कि इससे हमको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। कि इस लॉ में कहा गया कि मोमेंटम की अगर हम लोग पढ़े, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इम्प्रेस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम लोग बोले कि मोमेंटम की तब्दीली की जो सरा है वो आमिल फोर्स, इम्प्रेस फोर्स के बराह रास्त मुतनासिब होती है और उसी सिम्ट में हरकत करती है जिस सिम्ट में फोर्स। अब यहां से फोर्स का एक डेफिनेशन भी आया और फोर्स का फॉर्मूला भी आता है। इस लॉ में क्या है कि हम अपने आप को अगर इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो इससे ताल्लुक रखती हैं, कि भाई लॉ ऑफ फोर्स जो है अगर हम किसी एक बॉडी का मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं तो वो मोमेंटम का चेंज उसके फोर्स के ठीक समांतर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा, अब वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके सामने एक

0: एक बहुत तेज रफ्तार बॉल आ गई, अब वो उसको कैच करना चाहता, तो वो उस कैच करने के लिए अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाता है। ये हाथ को पीछे की तरफ ले जाना मोमेंटम की तब्दीली है, और जाहिर सी बात वो कैच करने के बाद जो हाथ को पीछे ले गया, उसको ले जाने में कुछ ना कुछ वक्त लगा
1: जी, कुछ सेकंड तो लगे,
0: कुछ सेकंड लगे। ये कुछ सेकंड और ये जो मोमेंटम की तब्दीली, ये वहां फोर्स क्रिएट करेगा। यही वजह है कि बच्चे जो है

0: जो हर जगह फिट होता है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी को एक थप्पड़ मारिएगा तो अपने हाथ में भी आप दर्द महसूस कीजिएगा। ये तो न्यूटन का तीसरा लॉ है। और ये लॉ जो है ऐसा है कि आसपास जो हम लोग देखते हैं, हमारे बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे इसको अगर बच्चों को एग्जांपल के जरिए समझाया जाए कि एक कश्ती पर एक बच्चा जैसे ही कदम रखता है, कश्ती थोड़ा आगे की तरफ घूम जाए, है ना, क्योंकि कश्ती पानी पर है। और कश्ती पर कदम रखने से ही क्या होगा कि कश्ती आगे की तरफ चली, तो ये कश्ती पर एक हम रिएक्शन दिए, एक्शन किए, जिसकी वजह से उसके अंदर एक रिएक्शन क्रिएट हुआ, कश्ती जो पीछे की तरफ थोड़ा मूव कर दे। इसीलिए एहतियात जरूरी है कि भाई कश्ती पर चढ़ते वक्त बच्चों का हाथ पकड़ लिया जाए, ताकि वो गैप जो एक क्रिएट होता है कि वो बच्चे जो है जानते नहीं है। यहाँ न्यूटन का लॉ काम करता है। न्यूटन का लॉ में हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे पापोश, हम लोग घरों में अपने कमरे के सामने पांपोश रखते हैं, उस पांपोश में देखिए डस्ट लग जाती है, उस डस्ट को कैसे निकालती हैं? हम अपने घरों में देखते हैं, मेरी वालदा है या मेरी बहन है या मेरी बीवी है, वो किस तरीके से निकालती है, उसको झाड़ती हैं। ये झाड़ना क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है और उसमें पहला लॉ शामिल है। ठीक है, हम एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है। पहला लॉ क्या शामिल है कि हम बोले कि कोई भी चीज जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, सुकून में है तो सुकून में, है ना, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। वो डस्ट रेस्ट में
1: है,
0: उसको हम मोशन में ला दिए तो क्या हुआ, पूरा का पूरा साफ हो गया
1: जी।
0: तो हम लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके से ये रेस्ट एंड मोशन को समझ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रेस्ट और मोशन के ताल्लुक से समझाया। हमारे सामने तो ये बात समझे होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में इन बातों को गौर जरूर करेंगे। तो ये था आज का साइंस खेल खेल में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड।
0: बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: सच्चे दोस्तों, साइंस कोई मुअम्मा नहीं, एक दिलरुबा है, अगर आप चाहें इसे बनाना। अभी आप मुश्ताक अहमद से रेस्ट और मोशन के ताल्लुक से दिलचस्प जानकारियां समात फरमा रहे थे। इसी के साथ सरफराज को दीजिए इजाज़त। सुबह खैर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। बज चुके हैं दिन के 12, वक्त हो चुका है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि का। सुरभि में चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नेशनल रीडिंग डे की। पुस्तकें ज्ञान का भंडार ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सच्चे मित्र भी हैं। हर वर्ष 19 जून को भारत में नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध शिक्षाविद और पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पनिक्कर की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और ज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पढ़ना पठन केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि यह हमारी सोच, हमारी कल्पना शक्ति, भाषा कौशल और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित रूप से पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य साहित्य पढ़ने से ज्ञान का विस्तार तो होता ही है, मनुष्य का दृष्टिकोण भी व्यापक बनता है। आज के डिजिटल युग में जब लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में अधिक समय व्यतीत करते हैं तब पढ़ने की आदत को बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। पुस्तकें हमें एकाग्रता, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता करती हैं। पढ़ना मन के लिए बिल्कुल वैसा है जैसा व्यायाम शरीर के लिए। आज के समय में, डिजिटल युग में, जब हम डिजिटल रीडिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अपने स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ने की, तो शायद एकाग्रता का वह स्तर हम नहीं बना पाते हैं जो हम अपनी किताबों के साथ बनाते हैं। नेशनल रीडिंग डे हमें यह संदेश देता है कि जीवन भर सीखते रहने और ज्ञान

अर्जित करने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो आइए हम सभी प्रतिदिन कुछ समय पढ़ने के लिए निकालें और ज्ञान की इस अमूल्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। चर्चा है में इतना ही। चर्चा है के अंतर्गत आज हमने बात की नेशनल रीडिंग डे की। सुन लेते हैं कुमार शानू और पूर्णिमा की आवाज में फिल्म बोल राधा बोल के इस गीत को। गीत के उस पार कार्यक्रम सुरभि की अगली कड़ी पहल का रुख करेंगे।

कार्यक्रम सरभी की अगली कड़ी पहल। पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हज 2026 इनिशिएटिव की। तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है हज 2026 इनिशिएटिव। हज इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है और प्रत्येक सक्षम मुस्लिम के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है हज यात्रा। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना पहुंचते हैं। इतनी विशाल संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों के प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न पहलें की जाती हैं और इसी क्रम में हज 2026 के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण पहल और व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हज 26 इनिशिएटिव कहा जा सकता है। हज 2026 इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों को सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इसके अंतर्गत यात्रा की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, ई वीजा प्रणाली तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। भारत सहित अनेक देशों में हज यात्रियों के चयन और पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। यात्रियों को घर बैठे आवेदन करने, दस्तावेज जमा करने और यात्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। इससे समय की बचत होती है तथा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है। हज 2026 इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना भी है। हज के दौरान अत्यधिक भीड़, गर्म मौसम और लंबी पैदल यात्रा के कारण स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, चिकित्सा परामर्श और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा दलों, एम्बुलेंस सेवाओं और अस्पतालों की उपलब्धता को और सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था भी हज 2026 इनिशिएटिव का मुख्य भाग है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों, सीसीटीवी कैमरों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भीड़ प्रबंधन तकनीकों तथा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करके तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भीड़ नियंत्रण, मार्गदर्शन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में काफी सहायता मिलती है। यातायात और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना भी इस पहल का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए बस सेवाओं, मेट्रो नेटवर्क और अन्य परिवहन साधनों का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न पवित्र स्थलों के बीच आवागमन को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे यात्रियों को कम समय में अधिक सुविधा प्रदान होगी। हज 2026 इनिशिएटिव के अंतर्गत आवास और खान पान सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवनों और शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। भोजन की

गुणवत्ता, स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई के मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पर्यावरण संरक्षण भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हज के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन, जल संरक्षण तथा स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाओं को अपनाकर हज यात्रा को अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी हज 2026 इनिशिएटिव की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सहायता केंद्र, विशेष परिवहन सुविधाएं और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया भी हज यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ओरिएंटेशन शिविरों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से यात्रियों को हज की प्रतिक्रियाओं, नियमों और सावधानियों की जानकारी दी जाती है। इससे वे यात्रा के दौरान अधिक आत्मविश्वास और तैयारी के साथ भाग ले सकते हैं। हज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, अनुशासन, समानता और भाईचारे का संदेश देने वाली महान यात्रा है। हज 2026 इनिशिएटिव इसी भावना को और सशक्त बनाने का प्रयास है। आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु अपनी यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और यादगार बना सकें। तो अंततः कहा जा सकता है कि हज 2026 इनिशिएटिव तीर्थयात्रियों की सुविधा और कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार की गई एक व्यापक पहल है। इसके माध्यम से हज यात्रा को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित, आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और वे अपनी धार्मिक आस्था को पूर्ण श्रद्धा एवं संतोष के साथ निभा सकेंगे। पहल के अंतर्गत आज हमने बात की हज 2026 इनिशिएटिव की। कार्यक्रम सुरभि अपने आखिरी मोड़ पर चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में इस बेहद सुरीले गीत के साथ, जिसके कंपोजर हैं वसंत देसाई। फिल्म दो आंखें 12 हाथ के इस गीत के साथ दीजिए आज्ञा अपनी दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Good afternoon, dear listeners. You're tuned into the Sanchaita channel of Akashwani Kolkata. This is Pradhya, and coming up for you, the song My Sacrifice by Creed, and Thank You Baby by Shania Twain.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279

0: 02-87 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जाँच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
3: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. India maintained that the only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their eventual return. Highlighting the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, India alleged that growing protests and unrest in the region reflect widespread dissatisfaction with continued repression and denial of basic rights.
4: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.

0: restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on June the 21st, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. The National Testing Agency, NTA, has launched an official WhatsApp communication channel for candidates appearing in the NEET UG re-examination scheduled to be held on Sunday. The NTA clarified that all official WhatsApp communications will be sent only through its verified account bearing the number +91 7827980287. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations Human Rights Council, UNHRC, and called the Indus Waters Treaty outdated and unsuited to present-day realities. Speaking at the 62nd session of the UNHRC, First Secretary at the Permanent Mission of India to the United Nations, Anupama Singh, said a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship.
1: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement which is insulated from accountability, detached from present-day realities and untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: Anupama Singh also slammed Islamabad for using references to Jammu and Kashmir made by Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation, OIC, at the United Nations, asserting that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. She also accused Pakistan of using propaganda to deflect attention from its domestic challenges and continued support for terrorism.
1: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
0: In Jharkhand, 8 people were killed in separate lightning incidents during the last 24 hours across the state. Several people sustained injuries. 3 deaths were reported from Hazaribagh district, while 1 person each died in Ramgarh, Palamu, Lohardaga, Godda and West Singhbhum districts. In FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. Following a tactical scoreless first half where clear chances were sparse, the decisive breakthrough arrived in the 50th minute. India's LNG tanker Disha has successfully arrived at the Dahej port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds center's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है
3: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है
2: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

0: के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना।

0: ध्यान ही चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
1: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026

0: 2019 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সুদ সারং রাগে খেয়াল পরিবেশন করবেন পলাশ কুরি। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন প্রদ্যুৎ পাল, হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন প্রদীপ পালিত। সুদ সারং রাগে খেয়াল

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হলো সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 52 সেকেন্ড। একটু পরেই সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप

नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025

0: के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will disperse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Yozgar Yojana in New Delhi today. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said that since August last year, more than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under the scheme, of whom nearly 30% are women. The BJP today said that India's participation at the G7 highlights that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is steadily gaining the trust of the world's major countries with efficiency and competence. Addressing the media in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, despite not being a full member, India was invited at the forum and was seen taking a lead. He noted that during the summit, Mr. Modi proposed the International Mobilization Partnership for accelerating connectivity and trade, on which all countries expressed interest. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would

0: eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The president was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. President Murmu appealed all state governments and officials not to take the disease lightly because it is passed on from generation to another. She said efforts should be made to eradicate it completely because treatment is possible.
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: Defence Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defence production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. Mr. Singh also said the defence exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defence equipment. Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of a state-of-the-art 10,000-ton aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Ambazari, Nagpur this afternoon. The Delhi High Court has upheld the centre's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on Sunday, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. National Commission for Women has issued an advisory to all states and union territories calling for the immediate and effective implementation of comprehensive measures under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, POSH Act. The Commission said that the advisory recommends 18 measures for immediate action by state governments and district administrations. The advisory seeks to ensure that every workplace, whether in the government, private, or organized or unorganized sector, strictly complies with the provisions of the POSH Act and fosters a safe, inclusive, and gender-sensitive working environment for women. Benchmark domestic equity indices ended lower today, snapping a five-day rising streak. The Sensex shed 607 points to close at 76,803, while the Nifty fell 155 points to settle at 24,013. In badminton, India's Ashmita Chali has stormed into the women's singles semi-finals of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game win over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
2: अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
3: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना

0: बताएंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already. is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, that are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चले जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ, एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology FAT through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो। इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों, और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री

0: नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: आती है. पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट लेट दिस प्राइम मिनिस्टर इज गिवन देम एन अश्योरेंस दैट द गवर्नमेंट इज देयर विद यू. दैट इज व्हाट ही सेज इन दिस मोटो, नो रोजगार या कारोबार साथ है
0: भारत सरकार जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
1: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure split into two distinctive parts. The first part is support for the first time employees jinko pehli bar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time, and the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है.
1: Yes.
0: बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं. और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
1: Yes. See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा

0: स्त्री शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है, और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना?
1: Yeah.
0: लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that's total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था, है
1: ना? एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, support first time job seekers, that is what it says now. The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce, and then support first time job seekers, and then incentivize employers, especially

0: in the manufacturing sector to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they get taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू द अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड It's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and... The people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here. Right up to the top.
1: जितनी capacity है पूरी भरी हुई है.
0: It's full. Not a single seat is empty. People are... They're all job seekers. And most of these people, they'll be getting the jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they've got their letter.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees and the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold provided they are retained for at least 6 months and the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors however to heavily support the manufacturing sector Businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employees, for employers compared

0: Companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So and I am telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up, and I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address, and then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that he'll be clicking on the button, the magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country, and so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने

0: But it helps them. At least they don't starve. They get out 2 meals a day. They're able to earn enough to get 2 meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई. कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं
0: yeah, I think everything has stopped. They are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, he's entered, and he's walking in the most smartest way. Our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
1: एक बार
2: तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माई भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का.
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामुनि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे.
0: And now the welcome
2: remarks. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं.

0: Manasukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
1: Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, meri sahyogi mantri आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में

0: केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश

0: के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries, and the people are waiting anxiously. And the button is coming right in front. That is a remote control button, and the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15,00,000 people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
5: स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
4: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
6: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
5: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
6: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
5: डाइस पर
0: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब

करोड़ लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी

तो ध्यान में आता ही आता है, इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था
उसमें कुछ लोग

वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है
उसे

सारा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था, उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया,

उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने

कम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी

0: परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करें और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है और ये जो राशि आज हस्तांतरित

0: ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कॉमेंटेटर डी एंड्रू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो।
2: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को
3: The incentive has supported the creation of under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
4: पुनीत, 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी, और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं। आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं?
5: प्राची, देखिए, भारत में यदि पिछले हम 10-12 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो एक पूरी नई कहानी एक तरह से लिखी गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहले भारत का जो ग्रोथ इंजन था वो ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर से ग्रो कर रहा था, और उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज होती थी वो थोड़ी सीमित होती थी। वो एक तो सीमित होती थी एजुकेशन के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और जो बाकी जो सेक्शन सोसाइटी थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती थी, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या स्किल सेट कम होता था, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 वर्षों से सरकार की नीतियां रही हैं, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स हैं जहां पर पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी और भारत को वहां पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो ये नंबर्स बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो एवरेज सैलरी लेवल है उसमें इंकम में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज हैं, एक प्रकार से नई एरा है ये एम्प्लॉयमेंट की, और भारत को ज़रूरत है क्योंकि हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और यंग जो सेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आई थिंक इट इज़ रियली बैडली नीडेड।
3: Puneet, you mentioned about the services sector earlier on. Prachi mentioned about the time period from 2004 to 2014, 10 years. But now you talk about the other things. Clearly, we're a consumption-led economy now, leading to growth and manufacturing, of course. This is one point. The other thing is that Prime Minister often talks about the demographic dividend, right? So we have this workforce, the youth mostly, which were kind of looking for something, you know, in their career to do something. You talk about the lawyers, you talk about the doctors, engineers, software engineers, and all. But what about the other part of the population, the youth, who may not be that fortunate, you know, to have that degree of a software engineer or a lawyer or a doctor.

0: So how significant do you see this Prime Minister Bharat Rozgar Yojana actually contributing to that?
1: So Nishit, this is a very interesting question, and of course a question which really confronted us for many decades. So we had opportunities or employment opportunities for youth in cities. So if you move to a metro, so there was a lot of large scale migration, if you'd see, of workforce from villages in India to the cities, and therefore we had metropolitan cities and tier 2 cities coming up. But it really created a lot of human cost also for migrant laborers, because first of all they did not get the jobs that they were skilled to do, which they could have done better probably in their villages or in a smaller towns. And therefore I think there was this great gap in India's growth story, or great gap in India's economic development, I would say. Now, as we see, if you look at the way, and particularly if you look at the latest scheme, which encourages startups not only in cities, it encourages startups in villages also. So that is a very important thing. We need to develop employment in rural areas, not only in agriculture. We need to develop employment in rural areas in enterprises, and I think that is what the real story of the scheme is.
0: Puneet, you talk about the startups just now, concluded, the Prime Minister concluded his visit to France and at the G7 summit. On the sidelines of that, this Viva Tech summit, which was, the largest technology summit, which encourages the, the startup ecosystem, and the Indian presence was in this large force over there. This kind of manifests the aspirations of the youth, to bring up the economy, and of course, towards, manifesting the vision of Viksit Bharat 2047.
1: Yeah, I would say it really needs to unleash. We need to unleash this power. There's this huge source of energy, enthusiasm, which is lying with the India's youth. We just need to channelize it, and I think schemes like PMVBRY and these schemes are really important. We earlier had archaic schemes, which gave employment guarantees for digging, ditches in villages. So that is not where India is going to grow. I mean, we need to target employment in areas where India needs economic growth.
2: Puneet, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बात ना करें कि सोशल सिक्योरिटी कितनी ज़रूरत है उसकी हम आम जनता को. तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज में जो बढ़ोतरी हुई है, 25 करोड़ पहले हुआ करती थी और अब 94 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुँचा है, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए?
1: ब्राची, देखिए सोशल,
2: विशेषकर युवाओं के लिए,
1: जी देखिए, उड़ान युवा भी तभी बढ़ पाते हैं जब उनके पास एक सेफ्टी नेट हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. भारत में बच्चा जैसे ही थोड़ा सा व्यस्त होता था, एडल्ट होता था, कमाई की चिंता उसके माँ बाप को लगती थी और वो किसी भी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब में वो काम करते थे, क्योंकि उनको इमिजिएटली पैसे की जरूरत होती थी. मुझे लगता है सोशल सेफ्टी नेट जो आप, जैसे आपने जिक्र किया कि 94 करोड़ नागरिकों को ये आज उपलब्ध है, इससे उनको ये हिम्मत मिलती है कि वो, क्योंकि उनको मालूम है कि बेसिक खाने पीने, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान की उन्हें अगर चिंता नहीं है तो वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं. तो मुझे लगता है इसलिए बहुत जरूरी है.
2: बिल्कुल श्रोताओं, अब आइए रुख करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, लगातार 5 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा. सेंसेक्स 607 अंक यानी लगभग 0.8% गिरकर 76,803 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक यानी लगभग 0.6% लुढ़ककर 24,013 पर आ गया. वहीं विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 0.2% से अधिक और स्मॉल कैप 100 0.4% से अधिक बढ़े. कारोबार की शुरुआत धीमी रही और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के कारण पूरे सत्र के दौरान बाजार पर दबाव बना रहा. हालांकि ट्रेडिंग के अंतिम आधे घंटे में सूचकांकों ने रिकवरी की, लेकिन अंततः गिरावट के साथ ही बंद हुए.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड लोअर टुडे, स्नैपिंग अ 5-day राइजिंग स्ट्रीक. द सेंसेक्स शेड 607 पॉइंट्स, नियरली 0.8% percent, closed at 76,803, while the Nifty fell 155 points or 0.64% to settle at 24,013. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose over 0.2% and the Small Cap 100 Index added more than 0.4%. The markets opened on a weak note and remained under pressure throughout the session, weighed down by heavy selling.

0: yet we had a broader market which was positive.
1: Right.
2: पुनीत, जब वैश्विक खिलाड़ी मांग में कमजोरी की बात कर सकते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें हो सकता है कि अब आने वाले समय में गिरावट आती ही रहे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम अपने लिए आईटी सेक्टर को कैसा, आप कैसा उसका अवलोकन करते हैं?
0: तो प्राची ने दुखती नर्व पर स्टॉक मार्केट की उस पर आपने हाथ रखा है ये क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों, सभी की बहुत बड़े एक पहली बात है कि बहुत कॉन्फिडेंस रहा है आईटी सेक्टर पे, बड़ा कैश जनरेटिंग सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। पिछले 25 से 30 वर्षों से हम देख रहे हैं वहां प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रेवेन्यूज की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, डिविडेंड की बात करें, तो काफी उम्मीदें वहां रही हैं और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट अभी भी भारतीयों का आईटी सेक्टर में है। और अभी सबके मन में सवाल है कि क्या होगा, क्या वो कंपनियां सर्वाइव करेंगी, ग्रो कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि खुद मार्केट्स इन सवालों का जवाब अभी ढूंढ रही है। पर मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कंपनियां हैं, करीब करीब सभी जो बड़ी कंपनियां हैं, TCS की बात करते हैं या इन्फोसिस की बात करते हैं, इनका 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए साल का आज भी प्रॉफिट ये कमाती हैं। इतना बड़ा कैश प्रॉफिट ये कमाती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे भारत की जो आईटी सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय तक बहुत ज़्यादा गिरेगा। डेफिनेटली अभी विश्व के स्तर पर सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा ज़्यादातर, और इस वजह से हम सेलिंग देख रहे हैं। पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सूनर देन लेटर वी विल कम आउट ऑफ दिस।
2: सेंटिमेंट को भी आप देखते हैं कि वहाँ पर अगर इस तरीके की बातें हुई तो इस वजह से हमारे यहाँ पर भी
0: बिल्कुल प्राची सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट ड्रिवन था। वहाँ एक्सेंचर का स्टेटमेंट आया रात को ही, जो अमेरिकन डिपॉजिट ADRs हैं लिस्टेड कंपनियों के हमारे, तभी गिर गए थे वो, तो ये बात साफ थी कि आज वहां पर थोड़ा गिरावट आई।
2: AI के कारण पारंपरिक जो IT सेवाएं हैं उनके बिजनेस मॉडल पर दबाव की चिंता अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्या ये भी एक कारण में आप गिनते हैं कि आज की गिरावट में ये भी काउंट होता है?
0: ये देखिए मुख्य कारण यही है। अभी हमें ये सच बात है मालूम नहीं है कि क्या असर आएगा AI का इन कंपनियों के रेवेन्यूज के ऊपर, कितने जरूरतें उनकी सर्विसेज की कम होंगी या उनके प्राइस कम होंगे या रेवेन्यूज कट होंगे। कल एक्सेंचर ने अपना रेवेन्यू फोरकास्ट सिर्फ 2% कट किया था और लेकिन का जो शेयर था वो 11% तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितनी, मैं ये कहूंगा जंपी है, मतलब कितना उनको चिंताएं हैं। अभी कुछ मालूम नहीं है, हमें साफ तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, मुझे अभी भी भारतीय कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव लगती है वैल्यूएशन पर।
1: राइट पुनीत, सो हॉट ऑन हील्स ऑफ द लार्जेस्ट IPO इन द US, we are also braced up for the largest IPO coming in some time in the Indian markets. So how do you see, if you look at the primary markets which have been really not doing well in the past 4 or 5 months, if we may say so?
0: So absolutely, I think so far 2026 has been a write-off as far as IPO is concerned. So now we have 2 major IPOs coming in, one by a national National Stock Exchange of India, which is a well respected large institution, another by another large company, private company. So I think this will really kickstart the IPO mood in the markets. But of course we need to see the performance of the broader markets. If we don't see foreign investors coming back, liquidity doesn't come back from investors. Last month we saw the mutual fund numbers were not very encouraging. We saw some decline in mutual fund numbers. I think it will be some time before these IPOs really hit, because they're still talking about filing documents. So my guess is that we will see these IPOs closer towards the end of the year, and by then my estimate is that the market sentiment will be better, and I think these IPOs will of course help in boosting that sentiment.
1: Right, Puneet, even if you talk about you mentioned about the other big ticket IPO also following this, the NSE IPO. In fact, if we look at it, you know, the timing of this, you know, the this IPO coming in, you know, for the past 4 or 5 months has been torrid times for the markets. Now these, the NSE IPO especially pussyfooting, you know, kind of stealthily kind of coming in at the time, shows signs of the recovery, the green shoots coming up probably.
0: So interestingly, while the headline indices in India have been very bad, in fact if you look at, compare Indian stock markets to global markets, we have been really underperforming. But if you look at the broader market, the sentiment of the people, that is not so negative. So there is some disconnect here where the headline numbers tell a different story, negative story, but the mood of the market is still not very negative in India. My guess is that if we see some good numbers here, some good IPOs, I'm sure people will be enthused to invest in the markets.
2: Aishwata Mabruk.

0: ते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुख रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.4% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% से अधिक नीचे आया। वहीं जापान का निकेई 0.3% बढ़ा। इधर चीन, हांगकांग और ताइवान के शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। बात करें यूरोपीय सूचकांकों की तो यहां भी आज मिलाजुला रुख रहा। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.3% से अधिक और फ्रांस का कैक लगभग 0.2% नीचे आया। उधर जर्मनी का डैक्स 0.1% से ऊपर कारोबार करता नजर आया।
1: And moving on to the US markets, Wall Street ended higher yesterday, led by gains in the chip stocks. Among the major indices, the Nasdaq composite surged 1.9%, the S&P 500 advanced 1.1%, and the Dow Jones Industrial Average posted a modest gain of 0.1%. Despite the gains, investor sentiment remained cautious amid expectations of a potential interest rate hike later this year. Meanwhile, the markets in the United States will remain closed tonight in observance of a public holiday. Puneet, talking of the US markets, you know, it's so ironical if you look at the chip stocks, you know, chip stocks rising over there, the Nasdaq composite surging 1.9%, and the tech stocks kind of climbing down here in the domestic markets.
2: So clearly this era is the era of AI, and AI is a very different story from IT services. AI is more about chips, about infrastructure, and that is where most of the money is being attracted right now. It's almost like a Pied Piper story, I like to say. But the real story in America really is the interest rate story. Because when the US Fed had the meeting and they said that there might be another interest rate hike, that pushed up the dollar index. If you see, the dollar index went up about 101, it used about 98, it suddenly shot up from 101 dollar index, and along with that the commodities came down. So gold came down very sharply, silver came down very sharply. So the whole idea, markets were looking for an interest rate cut towards the end of the year, because the new Fed chairman came and suddenly there is this talk of an interest rate hike. I think that has appended the entire market expectation. So the real story, if you ask me, in the international markets in the US, is going to be the interest rates rather than AI, etc.
0: लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो हमने देखा कि हाल ही के दिनों की बात है कि कॉस्पी और निकेई ने अपने एकदम उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, जबकि अभी इतनी सारी चिंताएं अभी भी है AI को लेकर के चिंताएं, और वो वहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं हम पिछड़ रहे हैं?
2: नहीं, देखिए कॉस्पी, और मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, जो कॉस्पी यानी कोरिया का जो बाजार है वहां पर दो कंपनियां ऐसी हैं जिनका वेटेज जो इंडेक्स में है वो 55% है, सिर्फ दो कंपनियों का, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भारत के पूरे बाजार के मार्केट कैप से ज्यादा है। ताइवान में सिर्फ एक कंपनी ऐसी है, चिप कंपनी बनाती है, जिसका अकेले का मार्केट कैप पूरे भारत की 7,000 कंपनियों का मिलाकर के उससे ज्यादा है, और उस कंपनी का वेटेज भी इंडेक्स में 50-60% है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हेवीली लोडेड एक तरफा वहां पर बाजार में तेजी है। जिस प्रकार से बाजारों ने कैपिटल अट्रैक्ट किया, वहां नुकसान भी हो सकता है। अगर AI बबल बस्ट होगा तो डेफिनेटली इन बाजारों को आप देखेंगे बहुत नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि इनसे मैं बेंचमार्क नहीं करूंगा। भारत के बाजार बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत मजबूत है, और इन द लॉन्ग टर्म मुझे पूरा विश्वास है कि वी विल फार आउट परफॉर्म मार्केट्स लाइक कोरिया एंड ताइवान।
1: एंड इन सम अदर स्टोरीज, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन बाय 9.98 billion US dollars to 671 billion US dollars during the week ended June 12th. According to the Reserve Bank of India, gold reserves slumped by 10.75 billion US dollars to 103.8 billion US dollars. Special drawing rights, that is SDRs, declined 66 million US dollars to 18.69 billion US dollars. The country's reserve position with the International Monetary Fund slipped by 11 million US dollars at 4.81 billion US dollars. Conversely, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by 846 million US dollars to 544 billion US dollars. Very briefly, Puneet, you know, there is this decline in the foreign exchange reserves, but I'll be coming back to the rupee appreciating, you know. It's been consistently appreciating over the past few sessions. So now, This the current market situation, and of course, you know, the IT stocks and the churn happening, you know, in the US, the chip stocks kind of going up. How much of that has a bearing on, you know, on
2: the rupee appreciation in India was direct effect of the RBI policy, which allowed banks to borrow slightly at a higher rate from NRIs abroad. So that, I think, expected to bring in $50 to $70 billion in the next 3-4

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके

0: परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली

0: कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the PMVBRY, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. He highlighted that under the scheme, around 70 lakh jobs have been created so far.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Defense Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defense production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. He said that defense exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defense equipment. Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of state-of-the-art 10,000 ton of aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Amba.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। दर्पण के अंतर्गत एक नजर, और एक नजर के अंतर्गत फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ नेशनल रीडिंग डे यानी कि राष्ट्रीय पठन दिवस के बारे में। यह दिवस भारत में हर साल 19 जून को मनाया जाता है। यह दिन केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पण्णिक्कर की पुण्यतिथि के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने समाज में साक्षरता और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं और बच्चों में किताबों के प्रति रुचि जगाना और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। डिजिटल युग में जहां लोग स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं, राष्ट्रीय पठन दिवस हमें याद दिलाता है कि पुस्तकें हमारे ज्ञान, कल्पना और व्यक्तित्व के विकास के लिए कितनी जरूरी हैं। इस दिन देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और पुस्तकालयों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ने की प्रतियोगिताएं, सेमिनार और कहानी सुनाने के सत्र। पढ़ो और बढ़ो, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है। पढ़ने की आदत न केवल हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाती है बल्कि हमारे मानसिक तनाव को कम कर सोचने समझने की क्षमता को भी निखारती है। राष्ट्रीय पठन दिवस हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कम से कम कुछ समय किताबों के साथ जरूर बिताएं और ज्ञान के

गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं संदेश संडालिया और आवाज सुनीति चौहान की और फिल्म का नाम चमेली। सात बजकर 7:42 फिलहाल वक्त है विधि विधान और समाधान का और आज इसके अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून जिसका मुख्य उद्देश्य देश के समृद्ध वन्य जीवों की रक्षा करना और अवैध शिकार तस्करी तथा उनके अवैध व्यापार को रोकना है। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अधिनियम के तहत

जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के विभिन्न प्रजातियों को उनकी संवेदनशीलता और खतरे के स्तर के आधार पर अलग अलग अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई और उनके शिकार या नुकसान पहुंचाने पर कड़े दंड तथा भारी जुर्माने का प्रावधान है और इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई, केंद्रीय प्राधिकरणों का गठन किया गया और बदलते समय और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए, जिससे लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को और भी कड़ा किया गया है। यह अधिनियम केवल जंगली जानवरों तक सीमित नहीं बल्कि यह दुर्लभ और औषधीय वनस्पतियों को भी विनाश से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत की प्राकृतिक धरोहर को सहेजने वाली एक मजबूत कानूनी ढाल है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन का अस्तित्व तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारे जंगलों और वन्य जीवों का संतुलन बना रहे। विधि विधान और समाधान में फिलहाल इतना ही।

7:54। गीतकार हैं इंदिवर और आनंद बख्शी और संगीतकार हैं वीजूषा। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक और फिल्म का नाम मोहरा। अगला नगमा बेहद खूबसूरत, फटाफट आप सब तक पहुंचाए देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक

0: सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है।

0: दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: दिस इज द कंट्री।
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम

0: विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
2: Pradhan Mantri

0: ফিফা বিশ্বকাপে আজ রাতে প্রথম ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। ভারতীয় সময় রাত 12:30 সিটল স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে। রাত 12:30 বস্টন স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় রাত 3:30 স্কটল্যান্ড মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, একবিংশ শতাব্দী দেশের সামনে বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। উদ্ভাবন, প্রতিভার বিকাশ ও মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে যার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্বকাপ ফুটবলে আজ সিয়াটেল স্টেডিয়ামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে। অন্য ম্যাচে স্কটল্যান্ড খেলবে মরক্কো।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसके संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है और उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अनुपम सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। असली मुद्दा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को वापस करना है। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। ये युद्ध विराम आज स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे से लागू होने वाला है। अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। दक्षिणी लेबनान में जारी संघर्ष के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा रद्द कर दी है। ईरान ने कहा है कि लेबनान में संघर्ष रुकने के बाद ही वार्ता आगे बढ़ सकती है। सीमा पर सैन्य कार्रवाई को देखते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कथित आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
3: मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। ये घटनाक्रम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। इससे पहले 11 जून को अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के कार्यकारी राजदूत को तलब कर अफगान हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर 13 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
4: As our foreign policy,

0: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत का LNG टैंकर दिशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम द्वारा संचालित और पेट्रोनेट LNG द्वारा चार्टर्ड ये पोत आज सवेरे दहेज LNG टर्मिनल पर पहुंचा। उम्मीद है कि यह कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के बीच देश भर में LNG की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज भारत का सबसे बड़ा LNG आयात टर्मिनल और देश के प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र है। दुबई में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय वाणिज्य दूतावास और दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्पिरिट काउंसिल के सहयोग से एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोग, दुबई पुलिसकर्मी, राजनयिक विद्यार्थी और योग प्रशिक्षक शामिल होंगे। प्रतिभागी योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास से संबंधित एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। भारतीय दूतावास ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और स्वस्थ तथा जीवंत समुदाय के उत्थान को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 2015 में पहली बार वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया गया था। पिछले एक दशक में यह विश्व में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
2: चीन में आयोजित शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष भारत की रिकॉर्ड 7 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों में हंटर्स मून, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, उमराव जान, चंदू चैंपियन, कालिदास 2, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज और फुल प्लेट शामिल हैं। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों की मजबूत भागीदारी गर्व का विषय है। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राचीन महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शी यू वू को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक तय किया। वहीं मीनाक्षी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की मुक्केबाज कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा को 5-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में दीपक ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के नबी इस गंदाद्रोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। निखिल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के अमीन ममद ज़्यादा पर 5-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले स्नेहे 65 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की किंगा क्रोवका से 0-5 से हार गईं और प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूले में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला शनिवार को चिली से होगा। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कनाडा ने कल रात कतर को 6-0 से हरा दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच

शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और

उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की चार नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।